0: भरे खन प्रलो छैन हतारलाई ना
1: हो याजु मेवाने बछेजी तारे मुई पिमा मिमामी मार्बलरी प्रिमा बिरा देसी सर मोबा गंगा आर्ट ग्यालरी याबो मय आछु
0: नै याम बिरा तयार तडीमा तारे नासर बजार लम्बीमु मेडा भा कप ट्रफी प्रमाण पत्र ब्यानर को बनेल पर्दी बिरा याबो मयलो खारे तारे प्रिय यानसेदी
1: स गंगा आर्ट ग्यालरी तो बनेबर आछु
0: तर मी मार्बलर फिवा साइन बोर्ड होर्डिङ बोर्ड लाइट बोर्ड जम्मै बनिम्रो फोटो प्रिय